0: अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो, ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
1: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़, इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
2: श्री राम भगवान के नहीं हुए तो वो आप लोग के राम हो गया, बताइए हो पाएंगे। जो श्री राम की को जगह दिया, जो हमारे पूजनी है, जो हमारे आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो हमारा कोई मान्यता नहीं, कोई अहमियत नहीं है, हम सबकी कोई अहमियत नहीं है संविधान की, क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया, जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए उन्हीं को धोखा देने का हमने काम किया है।
3: ये आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वही लोग शोर मचा रहे हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने। इनको इतनी समझ नहीं है कि राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, और उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना छोड़े योगी ना छोड़े मोदी किसी को।
4: निकेतन अग्रवाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अ ड्रामेटिक टर्न। पुणे पुलिस टुक बोथ द अक्यूज सिया गोयल एंड चेतन चौधरी टू लोहागढ़ फोर्ट टू रिक्रिएट द क्राइम सीन। The police further claimed that the duo had visited the fort before the murder to rehearse the crime and prepare statements to mislead the investigators. Investigators also claimed that the first murder was an attempt. It was planned on the 14th of June. The accused allegedly searched online for murder methods and planned disguises and tried to delete chats after the incident. Now, according to sources, investigators are also probing a possible motive and whether it was Chetan who wanted 3 years to build his career with the alleged plan to delay Sia's marriage. Police have also seized Chetan's motorcycle, hoodie and headphones for forensic examination.
5: Been recreated. The accused has taken us to the places, like how it all happened, whose role was what in this whole incident, that's all.
6: सुबह सिया को हम सिया ने बताया जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है, सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।

0: मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
1: फिर मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए, और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। थैंक्स सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। सब बहुत अच्छा लगा हमको, सोसाइटी ने सपोर्ट दिया, कैनल ने किया, उन लोगों ने। थैंक्स यू।
2: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side. Stay tuned.

0: वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
2: Let's take you through more developments taking shape at this hour. Now, the war of words over the Ram Mandir donation theft row has now intensified. Both the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and the opposition leader Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav have launched sharp attacks against one another. Yogi Adityanath has accused the Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He went on to say that the Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. Meanwhile, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith and even alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. Samajwadi Party chief also questioned Yogi Adityanath's priorities and called for accountability coming in from the BJP government.
3: Aapme himmat nahi kyunki aap to mulla aur maulviyon ke samne ghutne tekne ke siway aapke paas koi aisa agenda nahi jo pradesh ke vikas ke liye ho. अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो, ये धूल झोंकने का काम मत करो. एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो. अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है. अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है. मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था. वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी. अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने. अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी. और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके.
4: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो. भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है. इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है. क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं.
5: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है. उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है. सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए.
2: With that, slipping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।

0: ambitious twin tunnel road project that's officially taken off, with the Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar laying the foundation stone. But this project has sparked such a political face-off. The government says that the tunnel connecting these areas of the Mikri Circle and the Hebbal Junction will provide long-term relief from the city's chronic traffic congestion. But we have D.K. Shivkumar there saying that this project is a step to decongest the situation that Bengaluru has been facing as far as traffic is concerned. He's also added that his government is drawing up a plan for the next 50 years. However, the BJP has now hit back. We have Tejaswi Surya of the BJP saying that the plan is as unscientific and a tombstone of urban planning. He's also gone ahead, one step ahead, claiming that the tunnel will be congested from D1 itself. Listen in.
1: ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಈಗ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಏನು ಕನಸಂತೆ ಅಲ್ವೇ
2: ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ
1: ಅದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿ 30 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂದು ಅವತ್ತೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋಯ್ತು. ಈ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1100 ಕೋಟಿಗೆ ಅದು ಏರಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇದು ಅಂಡರ್ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಅವತ್ತು ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು?
0: Switching tracks now to West Bengal, and it is, of course, the BJP that is now set to bring in the UCC, the Uniform Civil Code Bill, fulfilling a key poll promise, and that is the promise that is going to be fulfilled. This is a poll promise and setting the stage for a political showdown. Of course, the opposition up in arms, particularly the TMC, the government has, in fact, it was expected to table this today, but sources are saying it's unlikely to do so. Instead, it's expected to announce a committee to prepare the framework when it comes to the UCC, even as the proposal continues to spark political debates. For the BJP, the bill represents the fulfillment of a core electoral commitment and an assertion of its long-standing position that all citizens should be governed by the same set of civil laws. The TMC, however, has raised concerns over the constitutional safeguards, wider consultation and its impact on diverse communities. Then we have the Congress that's also called for a comprehensive debate when it comes to the UCC, urging the government to consider all aspects before moving ahead with the bill. Let's get you those reactions.
3: देखिए, हमारे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र, जिसे यहाँ पे बंगाल में हमने भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें इस बारे में स्पष्टता पार्टी ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। आदरणीय गृहमंत्री जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट रूप से कहे थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पश्चिम बंगाल सरकार के एजेंडे में यूसीसी रहेगा। तो हमारी सरकार हमारी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रही है। बाकी जो लैब जिहाद के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया, लैंड जिहाद, लैब जिहाद, इस विषय में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न व्यक्त कर चुके हैं, चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेकर कहीं पर।
4: हमारा स्टैंड क्लियर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हर धर्म है, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा। विद इन हिंदू देयर आर मेनी सेक्शंस। तो अगर कोई स्टेप लेना है, अगर कुछ करना है, टाइम देना चाहिए। एक पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए अगर कोई बिल लाएगा तो उसका टारगेट क्या है, कौन है, ये तो नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए सबके हित में होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, लीडरशिप एनालाइज करेंगे और पूरा वो एक जो भी होगा सहमत के ऊपर होना चाहिए।
5: यूसीसी बिल के लिए नोटिस है, आएगा बिल, ये तो पारित होना ही है। बहुत राज्यों में हुआ, यहाँ भी प्रोसेस शुरू हुआ है। बाकी सरकार आगे निश्चित करेगा क्या होना, कब बिल आएगा, क्या होगा। बहुत सारा बिल है, अब एक दिन में कितना पारित हो पाएगा वो भी देखना है।
6: देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का पाती जनता के सामने रहा। जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा,

0: With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
1: Now let's just also get your political reactions that are coming about because of what's really happening as far as those donations at the Ram Temple is concerned. That theft now has really got, you know, whether it's Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party launching a sharp attack when it comes to Yogi Adityanath and his government. But we also have Yogi Adityanath there accusing Samajwadi Party of playing double games and saying that, you know, the Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. Of course, Akhilesh Yadav, you know, questioning the irregularities, saying that how is it that all of this happened in the presence of the Chief Minister, because the Chief Minister made such frequent visits to the Ram Temple. The Samajwadi Chief has also questioned Yogi Adityanath's priorities and is calling for accountability from the BJP government. Then we have the Congress Party. We have Congress leader Rashid Alvi also strongly condemning the incident and comparing, you know, making comparisons there, asking for accountability and the strictest punishment possible. Let's listen in to all these reactions.
2: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
3: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
2: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
4: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
5: तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं आप आते हैं एक साल के अंदर, और मिनिमम चंदा अगर 100 रुपए भी है ना, छोटे से छोटा आदमी भी 100 रुपए से कम नहीं दे रहा है, वहां करोड़ों रुपए गया है, तो 1600 करोड़ है, 1664600 करोड़ रुपया बैठता है, बता दीजिए। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
1: Let's just get you the political heat that's rising sharply in the state of Tamil Nadu as M.K. Stalin has hinted at the possibility

0: decisions is a move that's been made in order to implement Kannada as the third language in the state. Now, that is the problem that people are having, and that is why they've raised that objection against that recent decision to implement Kannada as the third language. And they have written a letter to the CBSE. They have urged it to temporarily suspend that order on implementation of Kannada as not the first, not the second, but the third language. Now, this is as far as that Language Learning Act of 2015 is concerned. All schools, and this includes the CBSE, the ICSE and the State Board, now they've all introduce Kannada, where, you know, it cannot be the third language. That is the demand that's really being made at this particular point in time. Deepak joining us. Deepak, not the first language, not the second language, but the third language is what this new directive of the CBSE is. So what are the first two languages according to that?
1: In CBSE especially, they are, of course, saying that they'll have to choose one of the local languages, and then, English is going to be made the foreign language. So that's where the crux of the issue lies. And eventually students, of course, will have to be learning, two Indian languages, according to the latest mandate. This is something that this private school association in the past as well had raised objection, and NDTV had, of course, put up that report. And now an official letter as well has been written on similar lines. We'll really have to see, different states. There have been, various objections that have come in to the latest policy by the CBSE. Now, in this particular case as well, Private School Association in Bengaluru are writing this letter. We'll have to see whether the CBSE actually takes cognizance and responds to a request like this that's coming in.
0: Right, thank you so much, Deepak, for getting us the very latest as far as this new move by the CBSE is concerned and objections that are being raised. Moving on now, the BJP government in the state of West Bengal that was set to bring that Uniform Civil Code, the UCC bill, that was to be implemented today, fulfilling that key poll promise and setting the stage for that political showdown. Of course, this was going to be an assembly test for the TMC, but that's not going to be happening, at least as of today. The government was expected to table that, but sources are saying it's unlikely to do so. Instead, it's expected to announce a committee to prepare the framework of the UCC, even as the proposal continues to spark that political debate. For the BJP, the bill basically represents the fulfillment of a core electoral commitment and an assertion of its long-standing position that all citizens should be governed by the same set of civil laws.
2: देखिए हमारे मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जिसे यहाँ पे बंगाल में हमने भरोसा पत्र नाम दिया था उसमें इस बारे में स्पष्टता पार्टी ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे. आदरणीय गृहमंत्री जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट रूप से कहे थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पश्चिम बंगाल सरकार के एजेंडे में यूसीसी रहेगा. तो हमारी सरकार हमारी मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रही है. बाकी जो लैब जिहाद के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया, लैंड जिहाद, लैब जिहाद, इस विषय में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न व्यक्त कर चुके हैं, चिंता व्यक्त कर चुके हैं. तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है. ज्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेके कहीं पे.
3: हमारा स्टैंड क्लियर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये हर धर्म है, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा. विद इन हिंदू देयर आर मेनी सेक्शंस. तो अगर कोई स्टेप लेना है, अगर कुछ करना है, टाइम देना चाहिए. एक पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए अगर कोई बिल लाएगा तो उसका टारगेट क्या है, कौन है, ये तो नहीं होना चाहिए. जो भी होना चाहिए सबके हित में होना चाहिए. तो हम लोग देखेंगे, लीडरशिप एनालाइज करेंगे और पूरा वो एक जो भी होगा सहमत के ऊपर होना चाहिए.
4: सीसी बिल के लिए नोटिस है, आएगा बिल, ये तो पारित होना ही है. बहुत राज्यों में हुआ, यहाँ भी प्रोसेस शुरू हुआ है. बाकी सरकार आगे निश्चित करेगा क्या होना, कब बिल आएगा, क्या होगा. बहुत सारा बिल है, अब एक दिन में कितना पारित हो पाए वो भी देखना है.
5: देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का पाती जनता के सामने रहा. जिस जगह में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए. एक देश में एक ही कानून होना चाहिए.
6: कुछ नहीं बोलो, अगले दिन आने दीजिए.

0: घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
1: पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
0: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके।
2: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
3: तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं आप आते हैं एक साल के अंदर, और मिनिमम चंदा अगर 100 रुपए भी है ना, छोटे से छोटा आदमी भी 100 रुपए से कम नहीं दे रहा है, वहां करोड़ों रुपए गया है तो 1600 करोड़ है, 1664600 करोड़ रुपया बैठता है, बता दीजिए। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
4: Let's shift our focus to some breaking updates coming in from the state of Tamil Nadu. Trouble mounts for AIADMK as one more AIADMK MLA has resigned. This time it is MLA MR Vijay Bhaskar who has resigned from his post. C. Vijay Bhaskar is the one who has resigned, making it the 6th AIADMK MLA to resign in the last few months. Let's go straight across to Vijay Gopal on this. Vijay, of course, trouble mounting for AIADMK, crisis deepening within AIADMK as one more MLA resign. But take us through the details. Is he going to be joining the TVK? Take us through what is going on.
5: Radhika, as of now, we don't have clear information whether MR Vijay Bhaskar going to join TVK or not. Because earlier, C. Vijay Bhaskar, who is also an AIADMK member, AIADMK MLA and former minister, resigned from AIADMK and he is waiting to join TVK. Even as per our sources, there was a scheduled event today, that is on Monday, a big event where C. Vijay Bhaskar along with his supporters to join Tamilaga Vetrikalagam, but it got delayed. So what our sources indicate is both MR Vijay Bhaskar and see Vijay Bhaskar are likely to join TVK, but we have to wait for official information when the event is going to happen. As of now, as we speak, a while ago only, we are at right now at Secretariat, a while ago, MR Vijay Bhaskar, AADMK MLA from Karur constituency, tender his resignation, submitted his resignation to Speaker, Assembly Speaker JCD Prabhakar. It is seen as a big setback, Radhika, because MR Vijay Bhaskar is seen as a face of AADMK in Karur constituency. So this is seen as a big setback for AADMK, as see Vijay Bhaskar, who is from a Pudukkottai district, also resigned his MLA position and likely to join TVK. So many leaders have already resigned and joined Tamilaga Vetri Kalagam. You know, as of now, 7 AADMK MLAs have resigned. First four resigned, and then they joined. 3 MLAs, 4 MLAs have already joined Tamilaga Vetri Kalagam, and also sources indicate they are likely to contest on bipole also. But we have to wait for a clear information what exactly MR Vijay Bhaskar is up to. But as we speak, he has tendered his resignation. This is seen as a big setback. And also very recently, also TVK senior leader Minister Adav Arjuna also TVK is seen as another AADMK. All MGR, true followers of MGR and Jayalalitha, must join Tamilaga Vetri Kalagam. So we can expect more number of AADMK leaders also coming towards Tamilaga Vetri Kalagam. So this is seen as a big setback for AADMK, Radhika.
4: Certainly a big setback for AIADMK. We'll track this closely with you. Thank you, Vijay, for those details. Political heat is rising sharply in Tamil Nadu as MK Stalin has hinted at the possibility of early elections, saying the state may head for polls within the next 3 to 6 months. He also questioned the stability of the current government, claiming it is not a strong majority and continues to depend heavily on allies to remain in power. Stalin further alleged that law and order has declined under the present dispensation and urged his party cadre to remain fully prepared for any political development. In a parallel development, Vijay is set to hold a key meeting with the allies, adding further momentum to the evolving political equations in the state. Meanwhile, reacting to the charges, Sir Nirmal Kumar said the government enjoys strong political support, alleging that Stalin is focusing more on family interests than governance issue. Take a look at some of the statements and reactions.
6: யாரு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போடலாங்க, நாங்க தான் சொல்லிட்டோமே. எல்லாரும் முன்னுரிமையே தயாராகி இருக்காங்க. திமுக அதிமுக எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் கட்சி இணைச்சாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. திமுகவும் அதிமுக இணைச்சாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. மொத்தமா சேர்ந்து திமுகவும் அதிமுக மொத்தமா பிஜேபி கூட இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதை நோக்கி தான் அவங்க சேர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கும் குடும்பத்தை காப்பாத்தினா போதுன்ற முடிவு கொண்டாங்க. திமுகவுடைய தலைவரும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரும் அவங்க குடும்பத்தை காப்பாத்திக்கிட்டா போதுன்னு நினைச்சாங்க. அப்ப மொத்தமா பிஜேபியில இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதை நோக்கி தான் அவங்க ரெண்டு கட்சியும் போயிட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ராஜினாமா செஞ்சிருக்காங்க. அது அவருடைய இதெல்லாம் யாரு வேணாலும் சேர்ந்து நிற்கலாம். மக்கள் யாரை தெரிஞ்சிருக்காங்க, மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பாரு, நாங்கள் தனியாக நின்று தேர்தல் சந்திச்சோம். எல்லாருக்கும் எல்லா சொன்னாலும் மக்கள் யாரை விரும்புறாங்க மக்களுக்கு தெரியும்.
7: This government is very unstable and they are trying to do horse trading. Mr. Vaiko is on record stating that the chief minister had spoken to him and asked him to resign his 2 MLAs and he will come and campaign for them personally. This is the kind of instability, this is the kind of insecurity this government is facing. They are not doing any governance. See, they are afraid. They are very afraid of the DMK and what we are doing. Today, there was a protest by the student wing of the DMK against the minister, Mr. Sharath Kumar, who was seen doing something with a powdery substance.
4: Shifting focus, the anti-sacrilege law row has intensified. The Akal Takht has summoned all 78 Sikh MLAs and 9 cabinet ministers of the Punjab government. Summons are to appear in person to explain their support for the recently passed anti-sacrilege law. The high temporal seat claims the legislation was passed without consulting the Sikh Panth, violating a 1959 pact. Meanwhile, Chief Minister of Punjab Bhagwant Mann has confirmed that all Aam Aadmi Party lawmakers will comply and present the government's stance. And Arvind Kejriwal has said he can't even think of confronting the Akal Takht. Bhagwant Mann says all those summoned will submit their written replies. After that, they will come out and present their side. While Mann clarified that he himself has not been summoned by the Akal Takht.
8: ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

0: in comparing the accused to Mahmoud of Ghazni and demanding strict action and imprisonment for all those who are responsible.
1: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
2: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
1: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
3: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
4: तो कर तो ये छोटे छोटे पकड़ के कि रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं आप आते हैं एक साल के अंदर, और मिनिमम चंदा अगर 100 रुपए भी है ना, छोटे से छोटा आदमी भी 100 रुपए से कम नहीं दे रहा है, वहां करोड़ों रुपए गया है तो 1600 करोड़ है, 1600 करोड़ रुपया बैठता है। बता दीजिए, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।
0: All right, and from the war of words in Uttar Pradesh to the war of words in Tamil Nadu, political heat rising sharply in the state as M.K. Stalin has hinted at the possibility of early elections, saying the state may head for polls within the next 3 to 6 months. The former chief minister also questioned the stability of the current government, claiming it is not a strong majority and continues to depend heavily on allies to remain in power, further alleging that the law and order has deteriorated under the present dispensation and urging his party cadre to remain fully prepared for any political development. In a parallel development, Vijay is set to hold a key meeting with allies, adding further momentum to the evolving political equations in the state. Meanwhile, reacting to the charges, CTR Nirmal Kumar said the government enjoys strong public support and alleged that Stalin is focusing more on family interests than governance issues.
5: யாரு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போடலாங்க, நாங்க தான் சொல்லிட்டோமே, எல்லாரும் ஒன்றிணைய தயாராகிட்டு இருக்காங்க, திமுக அதிமுக எல்லாரும், ரெண்டு பேரும் கட்சி இணைச்சாலும் ஆச்சரியம் இல்லை, திமுகவும் அதிமுக இணைச்சாலும் ஆட்சியம் இல்லை. மொத்தமாக சேர்ந்து திமுகவும் அதிமுக மொத்தமாக பிஜேபி கூட இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதை நோக்கி தான் அவங்க சேர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கும் குடும்பத்தை காப்பாற்றினா போதுன்ற முடிவு கொண்டாங்க. திமுகவுடைய தலைவரும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரும் அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டா போதும்னு நினைச்சாங்க. அப்போ மொத்தமாக பிஜேபியில் இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை.

0: उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
1: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
2: And the war of words over the Ram Mandir donation theft row intensifying. Both the UP Chief Minister Yogi Adityanath and the opposition leader Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav launched sharp attacks against one another. The Chief Minister accused Samajwadi Party of playing a double game. He brought back the issue of firing on Ram devotees during their rule decades ago. He also went further and said the SP has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, SP Chief Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith, and he alleged Chief Minister Adityanath has no concern for faith. SP Chief also questioned Yogi's priorities and called for accountability from the BJP government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Mahmood of Ghazni, also looting temples and demanding strict action and imprisonment for those responsible.
3: क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
4: सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
5: मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
6: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
7: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है। देश में, प्रदेश में एसआईटी गठित है, जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे, मैंने कहा, बक्से नहीं जाएंगे।
2: Now, Now the latest in the Ketan Agarwal murder case, and the investigation has entered a crucial phase with the investigators uncovering fresh details about the alleged conspiracy. Now, according to call data records, Sia and Chetan, both the accused, last spoke on the phone exactly 34 minutes before the murder. During this call, Sia allegedly provided Chetan with a

0: गोरख धंधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में ना धर्म है ना शर्म है, इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
1: मैं पूछना चाहता हूं महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
2: An investigation into the alleged theft of donations from Ayodhya Ram Temple has revealed startling details. Police claim one of the key accused, Anukalp Mishra, witnessed a dramatic change in his lifestyle over the past few years, from a luxury home and a farmhouse to plans of buying an SUV. Investigators are now probing whether these assets were funded using money allegedly siphoned from donations made by devotees. Take a look at this report.
3: A luxurious house, a farmhouse, and plans to buy a brand new Scorpio SUV. Police say these are among the assets linked to Anukalp Mishra, who is believed to be the alleged mastermind in the Ram Temple donation theft case. Anukalp Mishra and his brother love funds from the donation boxes. According to investigators, Anukalp arranged for Love Kush to join the team responsible for counting donations, giving both access to the cash collected from devotees. A visit to Anukalp's village has now raised more questions. Neighbors say that the family's financial condition has changed dramatically in recent years. They claim the family, once struggling financially, suddenly acquired expensive assets and built one of the most prominent house in the villages.
4: ये जो प्लॉट है, ये काफी बड़ा प्लॉट है जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी, वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
5: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि तो यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
6: कहाँ पे?
5: फैजाबाद में।
6: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
5: हाँ, किसी स्कूल में
6: जी।
5: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो, बस इतने जानता हूँ।
6: राम मंदिर में काम भी करते थे?
5: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
6: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
5: बता नहीं सकते।
3: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
4: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
3: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the day.

0: इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है, इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं।
1: मैं पूछना चाहता हूं महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
2: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
3: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है। देश में प्रदेश में एसआईटी गठित है, जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे मैंने कहा बक्से नहीं जाएंगे।
4: All right, with that we'll slip into a short break. On the other side we'll take a look at the heat wave in Europe.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
10: Really?
9: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: इन द विलेजेस।
1: ये जो प्लॉट है ये काफी बड़ा प्लॉट है जो कि अनुकल्प मिश्रा ने हाल ही में लिया था, और इसमें एक फार्म हाउस नुमा जो प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके अलावा टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो जानकारी मिली है कि अनुकल्प मिश्रा ने जो अप्रैल के महीने में जो भव्य रामकथा करवाई थी वो उसका आयोजन यहीं पर हुआ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये लैंड है, और गांव वालों से जानकारी मिली है कि ये ज़मीन अनुकल्प मिश्रा ने अभी कुछ वक्त पहले ली थी, और लाखों रुपए की ये ज़मीन है जिसको परचेज किया गया था।
2: पढ़ाई कर रहा है क्योंकि यहाँ से पास होकर फिर अयोध्या में उसका नाम दिखाया गया।
3: कहाँ पे?
2: फैजाबाद में।
3: अच्छा, फैजाबाद किसी स्कूल में?
2: हाँ, किसी स्कूल में
3: जी।
2: तो वहाँ से वो पढ़ाई करके अभी भी पढ़ाई ये कर रहा है वो। बस इतने जानते हैं।
3: राम मंदिर में काम भी करते थे?
2: इसका हमें कुछ नहीं मालूम।
3: उनका नाम बाबा कैसे आया फिर
2: बता रहे हैं।
0: Locals also told that Anukalp recently built a farmhouse on the outskirts of the village, reportedly worth around rupees 65 lakhs.
1: ये जमीन कुछ वक्त पहले अनुकल्प मिश्रा ने ली थी, और गांव में भी उसका आलीशान मकान है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक उसका आलीशान मकान है जो कि उसने पिछले साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा में लिया था। तो गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उसके पास इस तरह की प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उसने न सिर्फ गांव में, गांव के बाहर, बल्कि यहां से लेकर अयोध्या तक कई प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टियां करोड़ों में है।
0: His neighbors added that while he already owned a vehicle, he was in the process of booking an SUV. Investigators are also examining a grand 7-day religious event allegedly organized by Anukalp earlier this year. The event was attended by several prominent personalities, including Champat Rai. With the investigation widening, the police is now tracing the alleged money trail and examining the assets of the accused. With fresh leads emerging, the Ram Temple donation theft case is expected to throw up more startling revelations in the days ahead. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
4: Well, the Ram Mandir donation controversy has now taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association also intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise blockade the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who choose to take up their cases. All these developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donations continues.
5: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaan CBI se honi chahiye. दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, नहीं करेंगे सीबीआई के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
6: वकील अगर मुकदमा लड़े तो
5: वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है, वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा।
4: SP Chief Akhilesh Yadav has exclusively spoken to NDTV. He's of course given out this big attack over the Mandir theft. Akhilesh goes on to say BJP has no sharam and no dharam in its dictionary. Akhilesh Yadav also says that theft truth captured on CCTV. That's his big attack over the Ram Mandir donation theft row, and also

0: and his exclusive chat with NDTV. Take a look.
1: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर.
2: ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का राह हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है, और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है. तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें. तो हमारे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे.
1: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
2: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा. लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों. और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है. और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
1: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है.
2: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जाँच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है. और केवल ये नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं.
1: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
2: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्यावासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट में लगते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहां तक कुछ चढ़ावा पहुंचा है.
0: Staying on with the story now, the war of words over Ram Mandir donation theft row has intensified. Both the UP CM Yogi Adityanath and the opposition leader Akhilesh Yadav have now launched sharp attacks against each other. Yogi has accused Samajwadi Party of playing double game and even firing on Ram devotees during their rule. He went further and said that Samajwadi Party has no agenda beyond appeasement politics. On the other hand, Akhilesh Yadav called the irregularities a mockery of faith and alleged that Yogi Adityanath has no concern for faith. SP chief also questioned Yogi's priorities and called for accountability from the Bharatiya Janata Party government. Meanwhile, Congress leader Rashid Alvi strongly condemned the incident, comparing the accused to Muhammad of Ghazni and demanding strict action and imprisonment for all those who are responsible.
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो. ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
4: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
5: हम राम भक्त लोग हैं और राम भक्तों की सरकार है। देश में प्रदेश में एसआईटी गठित है, जांच हो रही है, एफआईआर हो चुकी है, पारदर्शिता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे मैंने कहा बक्से नहीं जाएंगे।
6: मैं पूछना चाहता हूं महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है, इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए।
0: We have some breaking news coming in. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari, he's rather given out a statement on the Uniform Civil Code Bill, on the UCC Bill. CM Suvendu says that we are committed and we will bring the bill in the state. We will implement UCC in Bengal. I'm issuing this statement on 9th July. We will place this bill in the cabinet. We will base ours on Uttarakhand and Assam. Only one law bill will be followed. And he's also said that the UCC bill is all set to be presented before the state cabinet on July 2nd. Suvendu Adhikari also says that Adivasi will be kept out of UCC. We will also form a committee and Supreme Court retired justice will head this. We're talking about Justice Ranjan Desai. I want to go across to Shreyasi for more on this. Shreyasi, Chief Minister Suvendu Adhikari clearly saying that this bill will be put forth in the cabinet on July 9th. But before that, it will be rather presented in the state cabinet on July 2nd. He's adamant that UCC will be implemented in West Bengal. Tell us more.
7: Well, that's right. While, reiterating his commitment and the BJP's commitment to bring about the Uniform Civil Code here in West Bengal, the Chief Minister has said that a committee is going to be formed under retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai, who had also headed the committee in Uttarakhand before UCC was implemented there for the first time across the country. This particular committee is going to see the nitty-gritty of this particular law before it is enacted and will submit a report to the West Bengal government in the next 4 weeks after holding deliberations with all the stakeholders. The Chief Minister has also made it clear that certain tribal communities, including the Adivasis and the Kurmi community, will be kept outside the ambit of Uniform Civil Code, given the fact that they have their own beliefs and practices and rituals which cannot be brought under this UCC. However, the government does not want to come across as someone who is in a hurry to implement the UCC law here in West Bengal. We were expecting it to be tabled today at the Vidhan Sabha, but the draft bill was not shared with the MLAs. And now the Chief Minister made a statement in the floor of the House stating that the bill is likely to be introduced in August. Once the committee has done a thorough study about the details and the implementation before really introducing it before the assembly in August. Back to you.
0: Chrissy, and the big question is, of course, if UCC will be in Bengal by end of August. But stay with us. Let's just listen in to what the West Bengal Chief Minister said on UCC. All right, we'll play that bite in moments from now. Shreyasi, if I can just come to you again. Chief Minister of Bengal, Suvendu Adhikari, has clearly said that UCC will be implemented in Bengal. A special committee has been formed, which is being headed by Justice Ranjana. But the big question is that with the UCC being put forth in the cabinet by July 9th, talk to us if UCC will finally be implemented in West Bengal by end of August.
7: Well, looking at the numbers that the BJP has in the Vidhan Sabha, that's almost 207 out of 294. That means that the BJP has a comfortable majority and it's likely to push through this bill. Of course, this was a commitment that the BJP had made in its poll manifesto here in West Bengal and promised the people of the state that if voted to

0: स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आके और मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
10: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
9: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा और प्योर मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
11: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
10: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: तो अनुराग भदौरिया।
1: यू नो पद्मजा, व्हाट कबीर हैज सेड, पहाड़ पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी बली पीस का संसार,
2: पूछ नहीं रहे हो ना,
1: आकर पाथर जोड़कर मस्जिद गई चुनाए, ताचोड़ मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदाए। आज हमको बताया जा रहा है कि आप मंदिर नहीं जा रहे तो आप राम भक्त नहीं, आप सनातनी
2: नहीं। अरे भाई ये मैंने बोला ही नहीं,
1: कबीर कबीर हिंदुइज्म एंड तुलसी हिंदुइज्म, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स।
2: But you cannot be quoting me exactly 180 degrees opposite to what I have just said. Did you not bother to hear me? Maybe you should play the recording of this.
1: Charu Pragya, I'm only saying somebody who has not gone to Ayodhya. If you are
2: exactly what I said.
1: Not Ram Bhakta, Ram Sapnatar. I think you are grossly mistaken.
2: No, no,
1: what the political discourse BJP wants in this country.
2: My God, there is really no point in arguing with
1: you.
2: Like banging my head into a wall again and again.
1: Yogi Adityanath has to take the moral.
2: Ashutoshji, you have not heard a word of what I said.
1: Lord Ram,
2: I was the first one to say going to the temple is not necessary.
1: I am going to the extent
2: of saying Yogi Adityanath should resign. Parvat ki puja aur Hari ki puja ki baat kar rahe ho, to kisi ki bhi puja nahi kar rahe.
1: I am going to that extent.
0: Okay, you know, the thing is, nobody is asking for a certificate of devotion by people going and visiting a temple. But when you have gone out of your way, Samajwadi Party has also seen people like Swami Prasad Maurya who have gone out of their way to insult this very faith, and people have remained quiet, which is why you look back and you look at those precedents. Aur sawal yahi hai ki ek taraf Anurag Bhadauria, jab aap dharm ki baat kar rahe hain, jab aap logon ki aastha ki baat kar rahe hain, to sabse pehle baat aa jati hai log आपको याद दिलाए, एक तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे, और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जैसे कि सज्जन कुमार ने बोला, एट द एंड ऑफ द डे इज अ सैफरन वेयरिंग मंक। अब उनको कोई देख ले कि वो धर्मद्रोही हैं, ये उन पे चिपका पाना बहुत मुश्किल होगा।
3: देखिए सवाल यह है कि सनातन की बात हो रही थी, सनातन क्या सिखाता है? सत्य बोलने की बात करता है, सबको अपनाने की बात करता है, प्रेम की भाषा सिखाता है, और कर्म जो हमारा होता है उसको प्रधान माना जाता है। तो हम वही तो कर रहे हैं समाजवादी लोग, हम सत्य बोल रहे हैं। हमने कहा कि प्रभु के मंदिर में यहाँ चोरी हुई है, बाद में SIT हुई, पता भी चला, पैसे भी मिले कि यहाँ चोरी हुई है। हम प्रेम की भाषा बोलते हैं, हम सबको अपनाने की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सबको तो अपनाने की बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात तो करता है सनातन, और कर्म की बात होती है तो हम तो हमारे जो कर्म है हम वही तो प्रधान है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम समाज के अंदर में समाज को जोड़ने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसानों के भले की बात करते हैं, महिला समस्या के समाधान की बात करते हैं, और हम क्या करते हैं? यही तो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, और प्रभु के यहाँ पे हो रही चोरी को बचाने का काम करते हैं। तो बताइए प्रभु किसके साथ खुश होंगे?
0: बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही, आपने कहा कि सनातन सनातन ये कहता है कि सबका सम्मान करो, सबको साथ लेके चलो। आपके ही तो नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने तो कहा था रामचरितमानस के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो इंसल्टिंग है, वो गलत है, वो घृणित है। आप ही के तो नेता थे, तब सम्मान और सनातन की बात किधर गई थी?
3: हाँ थे, सुन तो लीजिए भाई, आप बोल तो दिए, सवाल पूछ लिए, जवाब सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं? थे, गए क्यों? क्योंकि वो सनातन का अपमान करते थे, गए। और भारतीय जनता पार्टी तो उनको ऐसे जो सनातनों के हमारे धर्म के बारे में खिलाफ बोलता है, उनको तो अपनी पार्टी में लेती है।
0: नरेश अग्रवाल की बात करें,
3: याद है अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला था?
0: नरेश अग्रवाल तब तो आपकी पार्टी में थे ना, जब उन्होंने राम में रम को ढूंढा था, अब तो वो आपकी पार्टी में थे ना।
3: भाई मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में टोकेंगे तो ठीक नहीं है। आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूँ। नरेश अग्रवाल जी को किस पार्टी में लिया बाद में, जो प्रभु को विस्किम कहाँ कहाँ खोज रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकता था। यही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना, जो प्रभु का अपमान करते थे और उनकी बेटे और उनको बेटे का रम का मंत्री भी बना दिया उत्तर प्रदेश के। और एक मिनट रुकिए ना, और मत कीजिए, यहाँ पे जो इनके मंत्री निषाद जी, संजय निषाद क्या कहते थे? प्रभु दशरथ के बेटे नहीं है, राम दशरथ के बेटे नहीं है, वो मंत्री है इनके यहाँ। कमाल ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी बताते थे। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी प्रभु के बारे में बोलेगा उसको तो ये लोग ले लेते हैं अपने साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा साफ हुआ है, उनका जो नकाब था उतर गया, राम मंदिर में चोरी की जगह ये समाजवादियों ने उतारा, समाजवादी उनके चेहरे से नकाब खींच लिया, उनका असली चेहरा सामने आ गया कि वो उनको प्रभु से कोई लगाव नहीं है, उनको धर्म से मतलब नहीं है, धन से मतलब है। किस तरह से धन वहां पे लिया जाए, किस तरह से वहां लूट मारो। अरे ये जो समाजवादी ने उठाई बात तो ये बीजेपी को उठानी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए प्रभु राम के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, लेकिन सचिन कुमार द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स दैट इलेक्टोरली स्पीकिंग देयर हैज बीन ट्रबल फॉर द बीजेपी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इफ यू जस्ट लुक एट अवध इन 2019 ऑफ द अबाउट व्हाट 24 seats which are in the Awadh region, of which Ayodhya Faizabad is also a part. In 2019, the BJP had swept this area. All 24 seats had gone to them. Cut to 2024 and the India bloc got 13 out of those 24 and the BJP was less than half at only 11. Will this not add to the BJP's headache? This entire Ram Temple fiasco.
4: No, I mean, of course, you have two set of voters. One voter which votes for you enthusiastically, despite having bona fide opposition. Second scenario is when you have a sense of grudge with the incumbent, that is BJP, and the region is certainly n number of things but Ram Temple. It may be the caste, community representativeness, intra-upper caste rivalry, upper caste versus OBC rivalry, etc. These equations are there that may trouble, right? But nevertheless, you need a bona fide opposition who is more relatable and attractive to you. Now, see the case of Maharashtra. Two states that accounted for BJP absolute loss, wherein BJP lost majority on its own, were Maharashtra, 48, it won 9, and then UP, wherein it was in 32, 33 seats, right? Now, we have seen what happened in Maharashtra within 3 months. BJP swept it on its own, swept Maharashtra from Vidarbha to Marathwara to Paschim Maharashtra to Konkan, all the regions. Similarly, from 2024, which was the zenith of Samajwadi Party, thereafter, what is the plank that Akhilesh Yadav has championed? He still is trying, one, to champion PDA, Pichhda Dalit Alpsankhyak, right? We do know that on the question of Pichhda, except for the Yadav community, majority of non-Yadav still are represented overwhelmingly more by the BJP. On the question of Alp Sankhyaks, they have to resolve it within India Alliance. You know, as far as Dalits are concerned, still Mayawati, despite being written off, is sitting on around 10% of the votes. So that way, while BJP may face certain grudging vote from the core base, a repeat of 2024 is unlikely because we have seen the same sort of precedent in Maharashtra. It didn't happen. Two, the voters may go to Akhilesh Yadav, but that cannot be on the plank of Ram Temple embezzlement issue. Why? Because I, as a devotee, may have grudge, may have anger, may be disturbed by this episode, but to say that I will cross the Rubicon and vote to a party that since 1990 has consistently either attacked Ram Temple movement or has remained. Where was the outrage when Udayanidhi Stalin said that Sanatan is dengue? Where was that outrage? Where was the outrage when consistently they have been attacked? So you cannot be a Sanatani and keep on endorsing the ones who are attacking and demonizing and denigrating the Sanatan as a whole.
0: आपकी हिस्ट्री आपके खिलाफ है, आपकी हिस्ट्री आपके खिलाफ है। अनुराग भदौरिया फिर आशुतोष
3: जवाब दे। देखिए कमाल की बात है, हम प्रभु के आस्था की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात कर रहे हैं। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे ना इस पे, हमें हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने तो वहाँ पे चोरी हो रही थी दान पात्र में, ये बात बताई है, ये जनता के सामने रखा है कि वहाँ चोरी हो रही है और आप उसमें राजनीति खोज रहे हैं, किसको वोट कौन सा जाएगा, किसको वोट किसके मिलेगा। अरे धर्म, ये धर्म पे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। हमें कभी देखा धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए? कभी आपने देखा कि हम वोट मांगते हैं तो एक्सप्रेस वे पे मांगते हैं, वोट मांगते हैं तो हमने मेट्रो चलाई उस पर मांगते हैं, हमने स्टेडियम बनाया उस पर मांगते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया उस पर मांगते हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई उस पर मांगते हैं, हमने लैपटॉप दिया उस पर मांगते हैं, पार्क बनाए उस पर मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलपमेंट।
0: चारू प्रज्ञा, ये वोट के लिए, राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ श्रद्धा के लिए, सनातन के लिए, आस्था के लिए, हर्ट फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं।
3: नहीं नहीं, प्रभु के मंदिर में चोरी हुई तो वो बात मैंने उठाई क्योंकि वो मेरी आस्था का विषय था, मेरे हमारी आस्था पे चोट पहुंच रही थी, इसलिए हमने वो बात उठाई, उजागर किया प्रभु के
0: चोरी हो रही है।

0: एक धर्म में आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है।
1: पर आपका आस्था का विषय तब क्यों नहीं था? सज्जन कुमार कह रहे हैं ना कि आपके आस्था का विषय तब क्यों नहीं था जब उदयनिधि स्टालिन सर इसी सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे, तब आपकी आस्था पर चोट नहीं लग रही थी?
0: वो स्टालिन तो अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी बता दे स्टालिन को अपने साथ नहीं लेगी डीएमके को, आज ही बोल दे, बीजेपी प्रवक्ता बोल दे मैं डीएमके के डीएमके पार्टी को अपने साथ एनडीए में कतई नहीं शामिल करूं।
1: अरे सर अपनी चोटिल आस्था का थोड़ा सा इतिहास भी तो बताइए, आज आपकी आस्था इतनी चोटिल है, उस वक्त हुई थी कि नहीं हुई थी?
0: मैंने भारतीय जनता पार्टी
1: राजा ने उसके खिलाफ बात की थी जब उदयनिधि स्टालिन ने उसके खिलाफ बात की,
0: साथ भी सरकार बनाएगी पीडीपी के साथ भी सरकार बनाएगी, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलती थी उसके साथ भी सरकार बना लेगी, मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना लेगी।
1: okay.
0: मलाई खाना होता है वहाँ
1: okay, चारों पे क्या रिस्पॉन्ड?
0: जहाँ मलाई नहीं मिलती है वहाँ पे धर्म की राजनीति सुन
1: अकाउंटेबिलिटी
2: Done. Yes. And if it is about accountability, then there cannot be two sides to this debate at all. If Anurag ji ki aastha itni strong hai, toh us aastha ke naam par abhi Krishan ji ka bhi naam le de aur Krishan Janmabhoomi ko bhi support kar de. Kyun nahi support kar pa rahe? Toh bhai aastha selective ho sakti hai kya? Mera toh straight sawal aapse ye hai. Aur agar aap yahan par accountability ki baat karein. Prabhu ko manne wale log hai,
0: kamal ki baat kar rahe hai. Jawab le liye.
2: आप specifics mein boliye. Hum Krishan Janmabhoomi movement ko support karte hai.
0: Nyayapalika ko manne wale log hai. हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, अम्बे हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका जो कहता हम मानते हैं वो उसके साथ मेरा धर्म मेरा आस्था का विषय है,
2: लेकिन
0: दोनों को जोड़िए मत, ये गलत कर
2: लेकिन
1: वैसे जब भी आपकी आस्था पे चोट लगती है मैं फिर से एक बार याद आ गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इतनी लंबी लिस्ट है तब सम ऑफ देम आर एक्चुअली स्किप माय माइंड January 27, 2023, here's what he said.
0: पद्मजा जी अगर आपका एजेंडा चल गया हो तो मेरी पार्टी में नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए, उसमें तेल
1: सर उस वक्त आपकी पार्टी में थे,
0: हमारी पार्टी
1: उस वक्त आपकी पार्टी में थे जब उनको संत महंत जल्लाद और महाशैतान दिखाई दे रहे थे, उस वक्त आपकी पार्टी में थे। बट व्हाट डू यू से टू सज्जन कुमार एनालिसिस आशुतोष दैट पीपल मे वांट टू मूव टू द समाजवादी पार्टी बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी अ रिजल्ट ऑफ दिस सिलेक्टिव आउटरीच बिकॉज हिस्ट्री does go against parties like the SP when it comes to this particular issue.
3: See, Padmaja, I will not make any prediction right now because elections are still far away and we have a history of what happened in Tamil Nadu. Suddenly everybody thought the DMK is going to win and suddenly somebody like Vijay comes in and he wins elections. Like Arvind Kejriwal in 2015, he won with 67 seats out of 70. Who had thought and who had predicted that when Narendra Modi was at the peak of his popularity, BJP will get only 3 seats. So let's not get into that. It's too early to predict anything about UP right now. Yes, I agree that BJP is on a strong wicket. But to underestimate Samajwadi Party in UP, especially after 2024, I think that's not advisable. I just want to comment on one small thing about the Tamil Nadu. See, this is the same BJP which had a relationship with the DMK. And I'm not talking about what Dayanidhi Stalin has said about Ram. That's condemnable and it should not be there. But anybody who understands the DMK politics and ideology, who has read Periyar, knows fully well what Periyar thought about Ram and the kind of things were done in Tamil Nadu. So BJP had no problems having a truck with DMK forming government because at that point of needed. And can anybody from the BJP today say that they will never have any kind of relationship, neither directly nor indirectly with DMK in future ever because Dayanidhi Stalin has said something wrong about Sanatan.
1: But Ashutosh, the question is not being asked of Udayanidhi Stalin or the DMK for what they said. It's being asked of people who today are claiming that they are hurt but didn't show any sense of hurt and rubbed shoulders with the DMK after these comments had been made. Surely there is some dissonance there, right? And even the voter is going to see through that dissonance. When Anurag Bhadauria goes to the voter and says, BJP is anti-Sanatan, BJP is anti-Ram Mandir, then that voter will say, but you didn't seem very concerned about Ram Mandir or Ram.
3: Padmaja, see, I think a lot of emphasis has been given on the ritualism. Hinduism is not exactly about ritualism. Let's face it.
1: Okay.
3: Where will you place Shankaracharya? Shankaracharya has never talked about rituals. But Ramanacharya has talked about rituals.
1: But sir, we are not even talking about ritualism. One is talking about outright disrespect.
3: You are not giving Chadhavas, you are not Ram.
1: You're talking about outright disrespect. If your leader is going to call names to the Ramcharitmanas, if you're going to abuse the saints and seers and you keep quiet, then that kind of selectivism shines through.
3: No. Again, I'm saying, is there one kind of Ram story in this country?
1: Okay.
3: There are more than 100. Which one is authentic? So you might have a disagreement on that. I might have a disagreement on that.
1: Absolutely.
3: Buddhism has a different Ram story. Jainism is a different Ram story. You go to Himachal, there's a different Ram story. You go to Tamil Nadu, there's a different Ram story.
1: Sure. So I mean, BJP we can all have our differences and our interpretations story. Of what is the real version of the Ramcharitmanas of the Ramayana. But I think we can draw the line at calling seers and saints Mahashaitan and Jallad. I think the meaning of that is pretty clear to whoever is watching. I'm going to leave it at that because, like we said, one part is the investigation. And on that, without a doubt, there should be the full truth coming out. And the other, though, is the politics, which only promises to get more interesting. Congress delegation going to Ayodhya tomorrow. For the time being, though, all gentlemen, Charu Pragya, thanks very much for joining me. All right, so what is going to be the Samajwadi Party's strategy from here on? We caught up with Akhilesh Yadav himself in conversation with NDTV's Manoranjan Bharti. Listen.
4: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर चढ़ावा चोरी
5: ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का राह हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो लेकिन जो खबरें आ रही हैं जो सूचनाएं आ रही हैं जो जानकारी मिल रही है और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है राम धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे
4: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है
5: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ मैं विपक्ष पे हूँ मैं दोषी नहीं कहूँगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों और इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT आपने रिपोर्ट किसको दी है आपने रिपोर्ट किसको दी है सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है क्या SIT की भी जांच होगी क्या SIT की जांच के लिए कौन सी संस्था होगी फिर
4: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा
5: नहीं,
4: है चोरी भी वही कर रहा है
5: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं आप ही ने SIT बनाई है तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें क्योंकि ये बात खुल गई है और केवल ये नहीं खुली सुनने में आया है कि जो

0: अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं।
1: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
0: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट में लगते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।
1: तो आप इसको SIR से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के?
0: नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे, तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम वो आएँ तो हम उनसे सवाल तो करें।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर।
0: नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको परेड अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब CCTV में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
1: एक नारा भी दिया है आपने कुछ?
0: नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
1: एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर पेपर लीक कैसे रुकेगा?
0: देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा।
1: आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया गठबंधन?
0: नहीं, ये बीजेपी के लिए इशू है, ये बीजेपी को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृतकाल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पर ये आप जाते हैं और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का?
1: पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है।
0: देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते, और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना इसके लिए। सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें।
1: आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम हो?
0: मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप EDCA इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था, हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था, फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है, और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ? आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का, और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे। जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। तो आप सांसद को क्यों डरा रहे हो?
1: जिस तरह से TMC टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नज़र रहेगी उनकी?
0: नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है। और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए? लेकिन मैं तभी तमाम सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल पास हो गया, जो महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे, भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें।
1: आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके DMK से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप चाहेंगे DMK इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे?
0: नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं और डीएमके का जो इशू है वो जेन्यून है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो

0: हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज़ की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
1: आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग,
0: जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए, जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है वो सब पीडीए के लोग हैं, जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ।
1: ये जो पार्टियाँ टूटती है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका?
0: सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कह रहे हैं वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे, और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में ना रहे।
1: कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, यूपी
0: इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे।
1: राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके?
0: देखिए
1: मायावती जी के लिए भी?
0: नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जनसमर्थन, और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे, उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूँ। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं।
1: रास्ते खुले रखे, छोटी सी
0: नहीं, सबके साथ। देखिए जो गठबंधन हम लोगों ने अभी अभी किया था और 2024 में जिसपे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमजोर दिखाई दे।
1: कांग्रेस को सीख दे रहे हैं?
0: नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ, कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है।
1: तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है?
0: नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आर्द्र मसाला।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर, जेके टायर।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: Jindal Saathi Seal hai to asli stainless steel hai.
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
1: What would the young man in India say if he could?
2: U.S. President Donald Trump has claimed that Iran had requested a meeting with the United States after the recent military escalation between the two sides over the Strait of Hormuz and announced that talks with Tehran would take place in Doha. Despite Iranian officials stating that no technical meetings have been scheduled this week, according to Axios, the meeting in Qatar is to work out their dispute over the Strait of Hormuz, which has witnessed a series of fresh strikes from both sides over the control of maritime traffic through the strategic waterway.
3: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना
4: बाल्टी
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
6: वाओ मामा क्या स्वाद है
7: अरे मेरे राजा
8: सबका राजा आर्टियर मसाला
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
11: देश का टायर जेके टायर
12: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी
13: कुछ तो बात है इस दिल में
14: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
15: सरसों जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
16: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
15: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
0: सरसों Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: From the newsroom to the studio,

0: इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर किया, आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बताते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या दलील थी?
1: नो टेक्निकल रिकॉर्ड इज टिल डेट प्रोड्यूस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. नो
2: टेक्निकल रिकॉर्ड
1: टिल सेवन डेज. नो माइन्यूट पीस ऑफ एविडेंस ऑल्सो इज रिकॉर्ड.
0: क्राइम कैसे सिद्ध किया जाएगा कि चेतन उसमें इन्वॉल्व?
1: दैट इज अप टू द प्रोसिक्यूशन, वी कैन कमेंट ऑन दैट.
0: चेतन अग्रवाल मर्डर केस, बोथ द अक्यूज्ड सिया गोयल एंड चेतन चौधरी वर टुडे प्रेजेंटेड इन द वडगांव मावल कोर्ट, वेर इन टुडे अगेन दे वर सेंट टू अ 4-day पुलिस कस्टडी. आफ्टर द 7-day पुलिस कस्टडी एंडेड, बोथ ऑफ द अक्यूज्ड टुडे वर प्रेजेंटेड वेर इन द पुलिस हैड स्टेटेड सेवरल ग्राउंड्स ऑन टू विच द इन्वेस्टिगेशन वॉज कैरिड आउट एंड फर्दर दे स्टेटेड दैट दे नीड ऑलमोस्ट 7 days ऑफ पुलिस कस्टडी टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच इंक्लूड्स दैट ऑफ क्राइम रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन टेकिंग Chetan to the spot and then recreating the entire crime. That is important. Other than that, the technical evidences needs to be studied again is what the police stated. However, the defense from Chetan and Sia's end clarified that until now there have been almost multiple evidences that has already been collected, and what was exactly done in these 7-day police custody, that again a 7-day custody is required. However, after listening to both sides, the court stated that both the accused will now be in a 4-day police custody until the 3rd of July. Now, based on the evidence that the police has collected so far, the circumstantial evidence, including the technical records, the call logs, the deleted WhatsApp chats and the messages, have led to the police discover several of these claims. That includes that Sia and Chetan were in a relationship. Sia was unhappy with Chetan. She never really wanted to get married to Chetan. Despite clarifying this, Chetan had still told her that she cannot escape or elope with the situation, and the families that they come from with that background, they need to get married, and that is where Sia was not really agreeing to that part. And eventually, with her secret lover Chetan Chaudhary, she went on to plan, is what sources tell, and currently that is a part of investigation the court is hearing upon, and also that the prosecution as well as the defense need to prove. And henceforth, the prosecution on one end is on to is also now agreeing and upon also investigating and arguing that it is somewhere that all of these records that are coming in public, they shouldn't really be considered as an evidence, and the police need to have some strong ground to prove that it was actually Chetan and Sia that committed the murder. एडवोकेट, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, आज कोर्ट में पेशी है, क्या आपकी दलीलें रहेंगी?
3: नहीं, अभी वो आज का सब पुलिस का रिमांड रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ये अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे.
0: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं,
3: वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कॉन्टैक्ट में है, इवन सिया भी मेरे कांटेक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड. हाँ, वकालतनामा हम लोग, वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट.
0: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप?
3: हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे. हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड. इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जाँच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले.
4: And well, the investigation into the Chetan Agarwal murder case has uncovered what police believe is a chilling digital trail. Investigators claim that the accused researched murder methods on Google and YouTube as well before allegedly executing the plan at the Lohagarh Fort. Police now say that the victim's fiancé, Sia Goyal, knew in advance the exact location where Chetan was allegedly to be pushed.
5: An extensive internet search, secret gestures, and a premeditated plot to kill. The Chetan Agarwal murder investigation has revealed stunning details. Police claim the accused extensively searched Google and YouTube for different methods of murder before allegedly finalizing a plan to push Chetan off Lohagarh Fort. Investigators say the online searches included questions about whether a fall from a height would be fatal and which method of murder would carry the least risk of detection. Police believe these searches were part of the alleged planning leading up to the crime. According to investigators, Sia Goyal held a meeting before the incident. It was during this meeting, police claim, that Sia was allegedly told about the exact location at Lohagarh Fort where Chetan would be taken. Police alert, CR News.

0: but trust officials came to their defense, as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram Temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
1: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar kar ke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई, हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे।
2: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
1: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन संस्था होगी फिर?
2: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
1: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है।
3: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
0: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn, with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
4: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaan CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jila adhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे CBI के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
5: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
4: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, अप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा।
0: And with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere because news and updates continue right after a short break on NDTV.
6: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: Higher head, check the audio. Higher head, check the audio.
6: Let's do it. Let's do it. Let's start.
9: Breaking story, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.

0: धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे।
1: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है, क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
0: दोषी मैं नहीं कह सकता, मैं विपक्ष पे हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है? SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या SIT की भी जांच होगी? क्या SIT की जांच के लिए कौन सा संस्था होगी? फिर
1: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
0: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि बात खुल गई है।
2: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। तो धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
3: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
4: बार ने आज ये फैसला लिया है कि SIT का विरोध किया है, ये जांच CBI से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे CBI के लिए, जहां तक जाने पर कई स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैर भी।
1: वकील अगर मुकदमा लड़े तो
4: वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत थाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते उतना नाम ले लें, उसी पैसे की प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
3: And with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere because news and updates continue right after a short break on NDTV.

0: उसी नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है, क्या SIT की भी जांच होगी, क्या SIT की जांच के लिए कौन सा संस्था होगी? फिर
1: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है।
0: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है।
2: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
3: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
4: बार ने आज ये फैसला लिया है कि SIT का विरोध किया है, ये जांच CBI से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे CBI के लिए जहां तक जाने पर की स्थिति है, वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
1: वकील अगर मुकदमा लड़े तो
4: वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
3: And with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere because news and updates continue right after a short break on NDTV.
5: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the 6th year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
7: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
8: High rate, check the audio.
6: Let's do it, let's start.
9: Breaking story, we're jumping straight into it.
6: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
9: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
6: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
10: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
9: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
6: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
11: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
12: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
11: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
12: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
11: What would the young man in India say if he could see you right now?
12: I'll be up there soon with you.
3: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. And in, now in news that's making headlines in down south, the row over Minister D. Sharad Kumar's video. It has resurfaced, it is a viral video, and it has escalated into a full-blown political storm in the state of Tamil Nadu. This with the DMK students wing taking out on the streets demanding his resignation, that is the resignation of the TVK minister, and even his arrest. Even as police has detained protesters, the anger is still mounting. The TVK is brazening it out. No action has been taken yet on the minister who has been seen with that white powder substance. There has been no inquiry that has been ordered so far by the TVK. This is probably the TVK saying nobody else matters in the TVK, only the Chief Minister. Chief Minister Vijay does. At the same time, the AIADMK's troubles have deepened with another MLA quitting the party amid speculation of switching to the ruling TVK. Against this backdrop now the TVK will hold a crucial meeting with its alliance partners, and this is going to be held on Wednesday, that is just 2 days from now. This is the move that is expected to formally shape the ruling coalition of the TVK, of the state government in Tamil Nadu, with the opposition under pressure and the ruling alliance consolidating. Is Tamil Nadu witnessing a decisive political realignment ahead of the next electoral battle? That's the key question that we are asking. Before we take you through other stories, let's have a quick look at the reactions that we are getting in as far as the drug row in the state of Tamil Nadu is concerned.
13: They have already condemned this because the video, they said video may be 2 years back, but the actions of the present minister was not right actually. So it was seen as if he was using a drug. So we wanted an investigation on that, because the Chief Minister should have by this time ordered for an police inquiry, and if found guilty, he should have been removed by this time. But nothing has happened after that, and I don't know how a Chief Minister is keeping quiet.
14: Question is, why the TVK government is shy of an investigation? A complaint has already been launched. Why they are afraid? So what? See, the Chief Minister came to power, stormed to power, alleging that there was rampant drug abuse in the state of Tamil Nadu, and due to which the law and order situation became worsened. When there is a doubt, when there is a cloud of suspicion about his own minister, it is only good, it is only ethical, it is only moral that the Chief Minister orders an investigation, find out the truth, and let the people of Tamil Nadu know.
3: And in other stories that are making headlines in the state of Tamil Nadu, well, the political heat is rising sharply in the state of Tamil Nadu, as M.K. Stalin has hinted at the possibility of early elections, saying that the state may head for polls, and this is going to be ahead of within actually the next 3 to 6 months. He has also questioned the stability of the current government, claiming it is not a strong majority and continues to depend heavily on allies to remain in the power. Stalin further alleged that law and order has deteriorated under the present dispensation and has urged the party cadres to remain fully prepared for any political development. In a parallel development, what we are witnessing is that Vijay is set to hold a key meeting with allies, adding further momentum to the evolving political equations in the state of Tamil Nadu. Meanwhile, reacting to the charges, it is CTR Nirmal Kumar who said that the government enjoys a strong public support and alleged that Stalin is focusing more on family interest rather than governance issues. Here are some political reactions that we're getting in on that story. Let's listen in.
15: யாரு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போடலாங்க. நாங்க தான் சொல்லிட்டோமே, எல்லாரும் ஒன்றுமே தயாராகி இருக்காங்க. திமுக அதிமுக எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் கட்சி இணைச்சாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. திமுகவும் அதிமுக இணைச்சாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. மொத்தமா சேர்ந்து திமுகவும் அதிமுக மொத்தமா பிஜேபி கூட இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதை நோக்கி தான் அவங்க சேர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்கும் குடும்பத்தை காப்பாத்தினா போதுன்ற முடிவு கொண்டாங்க. திமுகவுடைய தலைவரும் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரும் அவங்க குடும்பத்தை காப்பாத்திக்கிட்டா போதுன்னு நினைச்சாங்க. அப்ப மொத்தமா பிஜேபியில இணைச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதை நோக்கி தான் அவங்க ரெண்டு கட்சியும் போயிட்டு இருக்கு. அது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஒவ்வொருத்தரா வந்து ராஜினாமா செஞ்சிருக்காங்க. அது அவருடைய யாரு வேணாலும் சேர்ந்து நிற்கலாம். மக்கள் யாரை தெரிஞ்சிருக்காங்க, மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பாரு, நாங்கள் தனியாக நின்று தேர்தல் சந்திச்சோம். எல்லாருக்கும் எல்லா சொன்னாலும் மக்கள் யாரை விரும்புறாங்க மக்களுக்கு தெரியும்.
16: எல்லாத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு போன்ற சட்டமன்றத்தில் செய்யப்படுது. தமிழ்நாட்டுடைய சட்டமன்றம் எந்த அளவு ஒரு அதிகாரத்தில் படுகொலை இவையெல்லாம் நடக்கும் சார்பாக சட்டமன்றத்தில் நாங்கள்லாம் பேசணும். ஆனா அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடிய முதலமைச்சர் அதெல்லாம் பதில் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதிலும் கிடையாது. ஆளுநர் சட்டசபையில எந்தெந்த கூறுகள் சார்ந்து நீங்க அதற்கும் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருப்பீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் அவங்க சந்தேகம், இது சட்டமன்றமா இல்ல சினிமா தேட்டரா இல்ல ஏதாவது ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்திருக்கா கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு சட்டமன்றத்துக்குரிய தரத்தையே உங்களுடைய ஆளுநர் குறைத்து கொண்டிருக்காங்க.
3: And finally, let's talk about the heat wave that has hit Europe. Europe is battling a record-breaking heat wave with France, UK, Spain, Germany and other shattering June temperatures records weeks before the usual summer peak. Now, in a post on X, the WHO chief has said that more than 1,300 deaths had been recorded since June 21st that had been linked to high temperature. Further warning that climate change was possible and responsible for the extreme weather and that Europe was warning twice the global average. France's National Health Ministry has said that there had been around 1,000 more deaths than expected in the country since Wednesday. According to the health officials, most of the fatalities involved older people. Since June 20th, Europe have been experiencing an intense heat wave that has caused museums and schools to shut early. As the heat wave moves on to the Eastern Europe, France's weather agency has said that extreme weather conditions had diminished in most parts of the country, but some parts in the northeast remained under a heat wave advisory. And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: money, 5 lakhs were recovered, but somehow the trust general secretary still decided to stay mum. He did not lodge an FIR. What was the reason? Now, people say it could be because he feared that there would be badnami, that the temple would get a bad name. But the fact is, the law wasn't followed. No FIR was registered. And that is the reason why now demands are gaining ground that action be taken, not just against these 8 people who have been arrested, but also Champat Rai. But while that probe continues, and investigators say more people could be brought into its ambit, the key question now remains, will this scandal dent the BJP? Because this is not just about the investigation, it's going to have a fallout as well. And will the BJP be sucked into that fallout? Will the elections be collateral damage for the ruling party? Or will the Saffron Party and Yogi Adityanath manage to dodge that bullet with their Mathura counter-strike?
1: बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं, उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं।
2: वो तो कर तो दिए छोटे छोटे पकड़ के रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये इनकी औकात है, कितना पैसा गया है, इनकी औकात थोड़ी है। 16 करोड़ आदमी बता रहे हैं, आप आते हैं एक साल के अंदर, अभी चल रहा है, चलने दीजिए, देखिए क्या करते हैं।
3: राम भक्तों के हत्यारों को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी मामला है उसकी जांच हो रही है, एसआईटी भी कर रही है, एफआईआर हो गई, पुलिस भी कर रही है, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे।
4: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: Okay, let's take that question to the guest joining us today. Charu Pragya joins us from the BJP. We have political analyst Sajjan Kumar joining us along with senior journalist Ashutosh. But my first question is to Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party, because Yogi Adityanath has said very clearly, Anurag Bhadauria, aap Ayodhya ki chinta mat kijiye. Aap, agar aapko dharm ki itni chinta hai, to aap Mathura ki baat kijiye. Mathura ko mukt karane ke liye ab aap campaign chhod dijiye. Wo aapse kar seva ki maang kar rahe hain, Anurag ji.
5: सवाल यह है कि अयोध्या को तो बचा नहीं पाए। अयोध्या 40 दिन में 70 बार वहाँ पे प्रभु राम के यहाँ चोरी होती रही, और सरकारें भी इनकी हैं, उसमें ट्रस्ट के लोग भी बीजेपी से संबंधित हैं, बीएचपी के हैं, उसके बावजूद भी वहाँ चोरियाँ होती रहीं। प्रभु के घर में चोरी, बीजेपी ने तो आवाज़ उठाई नहीं, आवाज़ तो समाजवादी पार्टी ने उठाई। और जब से इनकी सरकार आई तब से चोरी तो देखने को मिल रही है, मंदिरों में चोरी हो रही है, पेपर चोरी हो रहे हैं, जमीन चोरी हो रही है, जंगल चोरी हो रहे हैं, सरकारें चोरी हो रही है, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, विश्वास चोरी हो रहा है, और तो और खबरें भी चोरी हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि इनके यहाँ तो चोर, जब से ये सरकार आई इतना भ्रष्टाचार है, चारों तरफ चोरी चोरी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा विश्वास हमें नहीं था कि प्रभु के घर में भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के यहाँ भी चोरी करेंगे। वो तो कहो समाजवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, आदर्श आचरण पर चलने वाले लोग हैं, वो तो हमने पकड़ लिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आई भी नहीं थी इतने दिन तक, हम लोग हल्ला मचा रहे थे कि चोरी हुई है, तो बीजेपी गायब थी, बताइए, बोलने को भी तैयार नहीं थी। बीएचपी के लोग आते थे तो पता क्या बोलते थे, ये समाजवादी लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे जो करोड़ों हिंदू सनातनी उनको उनके विश्वास को आघात पहुंचा रहे हैं। तब भी हमने बोला था हम उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे चोरी हुई है, हमें पता है वहाँ लूटा गया है, इसलिए समाजवादी ने प्रभु की आवाज़ उठाई है कि मंदिर लूटा जा रहा है। अब चूंकि वो उनकी पिच, जो मंदिर की पिच पे जो कहते हैं धर्म की पिच की बात करते थे लोग, अब इनका नकाब उतर गया है, क्योंकि अब सब लोग जान गए ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं।
0: मथुरा
5: धर्म मेरी आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है। अब दूसरी पिच तैयार करने लगे, अब दूसरी पिच तैयार कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ये जो पिच थी, ये जो पिच इन्होंने बनाई थी, इसमें बारिश हो गई है, ये जो इन्होंने पिच तैयार की थी, अब इसमें स्विंग हो रही है, बॉल गुगली हो रही है, बोल्ड हो रहे हैं, तो भाग रहे हैं। अब सब अयोध्या की पिच पे बोल्ड होने लगे, गुगली बॉल पकड़ने लगे, यहाँ पे गिल्ली उड़ने लगी, प्रभु के नाम पे इन्होंने जिस तरह से वहां पे लूटमार मची हुई थी, हम लोगों ने पकड़ लिया, तो आप दूसरा मुद्दा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब वो पिच पे खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे।
0: मथुरा
5: सवाल है कि हम समाजवादी लोग हैं, जहाँ जहाँ प्रभु के नाम पे चोरी होगी, जहाँ जहाँ प्रभु के नाम पे इस तरह का या दान पात्र में गड़बड़ी होगी, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम सनातनी लोग हम बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करते।
0: उन्होंने आपकी पिच खोद दी, तो आप बैट लेकर के यू हैव चेंज द स्टेडियम, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। Do you really think that bringing up Mathura is going to save you from the embarrassment of Ayodhya?
6: Padmaja, good evening to you, to my fellow panelists, all the viewers. I want to first separate the issues. This debate has two different aspects. One is the criminal investigation that is going on in the Ram Mandir Trust. And the second one is the political hypocrisy that Anurag ji so blatantly just displayed in front of you. Let's start with the position of the criminal investigation. BJP has made it extremely clear, nobody is being shielded. If I may say so, Uttar Pradesh is being led by a saffron-wearing monk. He is one person who has stood by Ram Janmabhoomi movement also, and the trust also, and the temple also, as has my entire political party. The birth of our political party was done on this. So the crime of one individual or two individuals or even 10 individuals cannot be institutionalized, and you cannot use this as an excuse to defame the entire trust or the temple, which is exactly what the opposition is trying to do. SIT kisne banayi? Hamari sarkar ne. FIR kisne darj kari? Hamari sarkar ne. Investigation kaun kar raha hai? Hamari sarkar. So let's also remember, today the Supreme Court has also made an observation. It has said that the SIT is doing its job just fine. Let it continue. There is no interference that is required from the court's point of view.
0: You might
6: also
0: have made the SIT. So they have, it's possibly when it got too hot to handle. 20 days too late. Right. 20 days too late, and that's what the investigation suggests. Again, I want to bring it back to the politics. Do you think this is going to singe you?
6: Because I broke this down into two parts in the beginning, Padmaja. The second part is the political hypocrisy, and you are saying, why are we questioning Samajwadi Party today on Krishna Janmabhoomi? We are questioning them because these are the same people who opened fire on car sevaks, never apologized for it. These are the same people jinke Supreme Leader had derogatory comments to make about Ram Lalla's temple at the time of Pran Pratishtha. Till date, he has not bothered to even go for darshan. Today, suddenly, inke andar ki mari hui, soi hui aastha jaag gayi hai. So, of course, we will ask him, is this about standing with Hindus? Because if it is, you will take a stand on Krishna Janmabhoomi also. Or is this about political opportunism, which you are very famous for, and you're behaving like a vulture at a time when every single citizen of this country's aastha has been hurt? Ram Mandir belongs to all of us. All of us. And the fact that there can be a story there, even if it is of 1 rupee, it is not just a crime in the eyes of law, it is crime in the eyes of Bhagwanji, and it's going to be taken very seriously.
0: Okay, Ashutosh.
6: Samajwadi Party ka asli stand kya hai?
0: Ashutosh, do you think this argument works when Charu Pragya says that this is not about concern for the faith of Hindus or what has happened in Ayodhya? This is political opportunism and the people are going to see through it. Otherwise, the Samajwadi Party, the Congress, would have the same stand on Mathura also, on Kashi also.
7: See, Padmaja, I think the whole world now knows who are the vultures. Now, nobody has to be told who are the real vultures, who are allowed to be there in the Ram Mandir and allowed to be looted. Frankly speaking, I was really disappointed by the statements of the UP Chief Minister, because it was his moral responsibility to see to it that nothing untoward happens in Ram Mandir. It was allowed to happen, and once it came into picture, 20 days, no FIR, nothing happened. Nothing happened for 20 days. The looters were allowed to destroy all kinds of evidences. All kinds of evidences. Now I'm dead sure nothing will happen in this case. Only the small fries, the foot soldiers will be caught, and the other people will go scot-free. Second thing, I think this is a very objectionable statement is coming from the BJP side and from the RSS. And I'm very serious about it. For centuries, a section of the Hindu society has taken on themselves to exclude others. Who are you to read Vedas? Who are you to read Upanishad? Now the same thing is it. Who are you to talk about Ram? Who are you to talk about Ram Mandir? It is the same exclusionary thing which is happening again. Now,
0: They are not saying don't talk about Ram. They are saying talk about Krishna ji also. Talk about Mahadev also. Talk about Mathura also. Talk about Kashi also. They are saying talk about all.
7: It's a very serious thing. What I'm referring to is a very serious thing. And this is subconsciously is being said. I'm not saying deliberately. It is subconsciously it is being said. Jin logon ko Upanishad Ved nahi padhne diya gaya, ye kehte hain tum kaun ho to padhne wale? Hamara copyright hai, hum padhenge. आज फिर कहा जा रहा है आप राम मंदिर पे बोलने वाले कौन होते हैं
6: नो आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग बट मजा हु इज ही कोटिंग

0: आपकी पार्टी में थे ना
1: भाई, मेरी बात तो सुनिए, अब आप बीच में टोकेंगे तो ठीक नहीं है। आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आपने सवाल पूछा जवाब दे रहा हूँ। नरेश अग्रवाल जी को किस पार्टी में लिया बाद में, जो प्रभु को विस्की में कहाँ कहाँ खोज रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकता था, यही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना, जो प्रभु का अपमान करते थे और उनकी बेटे और उनको बेटे का रम का मंत्री भी बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में। और एक मिनट रुकिए ना, और मत कीजिए, यहाँ पे जो इनके मंत्री निषाद जी, संजय निषाद क्या कहते थे, प्रभु दशरथ के बेटे नहीं है, राम दशरथ के बेटे नहीं है, वो मंत्री हैं इनके यहाँ, कमाल, ये टेस्ट ट्यूब में भी बताते थे। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी प्रभु के बारे में बोलेगा उसको तो ये लोग ले लेते हैं अपने साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा साफ हुआ है, उनका जो नकाब था उतर गया, राम मंदिर में चोरी की जगह ये समाजवादियों ने उतारा, समाजवादी उनके चेहरे से नकाब खींच लिया, उनका असली चेहरा सामने आ गया कि वो उनको प्रभु से कोई लगाव नहीं है, उनको धर्म से मतलब नहीं है, धन से मतलब है, किस तरह से धन वहां पे लिया जाए, किस तरह से वहां लूट मारो। अरे ये जो समाजवादी ने उठाई बात, तो ये बीजेपी को उठानी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए प्रभु राम के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, लेकिन सचिन कुमार द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स दैट इलेक्टोरली स्पीकिंग देयर हैज बीन ट्रबल फॉर द बीजेपी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इफ यू जस्ट लुक एट अवध इन 2019 ऑफ द अबाउट व्हाट 24 seats which are in the Awadh region, of which Ayodhya Faizabad is also a part. In 2019, the BJP had swept this area. All 24 seats had gone to them. Cut to 2024 and the India bloc got 13 out of those 24 and the BJP was less than half at only 11. Will this not add to the BJP's headache? This entire Ram Temple fiasco.
2: No, I mean, of course, you have two set of voters. One voter which votes for you enthusiastically, despite having bona fide opposition. Second scenario is when you have a sense of grudge with the incumbent, that is BJP, and the region is certainly n number of things but Ram Temple. It may be the caste community representativeness, intra upper caste rivalry, upper caste versus OBC rivalry, etc. These equations are there that may trouble, right? But nevertheless, you need a bona fide opposition who is more relatable and attractive to you. Now, see the case of Maharashtra. Two states that accounted for BJP absolute loss, wherein BJP lost majority on its own, were Maharashtra, 48, it won 9, and then UP, wherein it was in 32, 33 seats, right? Now, we have seen what happened in Maharashtra. Within 3 months, BJP swept it on its own, swept Maharashtra from Vidarbha to Marathwara to Paschim Maharashtra to Konkan, all the regions. Similarly, from 2024, which was the zenith of Samajwadi Party, thereafter, what is the plank that Akhilesh Yadav has championed? He still is trying, one, to champion PDA, Pichra Dalit Alpsankhyak, right? We do know that on the question of Pichra, except for the Yadav community, majority of non-Yadav still are represented overwhelmingly more by the BJP. On the question of Alp Sankhyaks, they have to resolve it within India alliance. You know, as far as Dalits are concerned, still Mayawati, despite being written off, is sitting on around 10% of the votes. So that way, while BJP may face certain grudging vote from the core base, a repeat of 2024 is unlikely because we have seen the same sort of precedent in Maharashtra. It didn't happen. Two, the voters may go to Akhilesh Yadav, but that cannot be on the plank of Ram Temple embezzlement issue. Why? Because I, as a devotee, may have grudge, may have anger, may be disturbed by this episode, but to say that I will cross the Rubicon and vote to a party that since 1990 has consistently either attacked Ram Temple movement or has remained. Where was the outrage when Udayanidhi Stalin said that Sanatan is dengue? Where was that outrage? Where was the outrage when consistently they have been attacked? So you cannot be a Sanatani and keep on endorsing the ones who are attacking and demonizing and denigrating the Sanatan as a whole.
0: आपकी हिस्ट्री आपके खिलाफ है, आपकी हिस्ट्री आपके खिलाफ है। अनुराग भदौरिया, फिर आशुतोष
1: जवाब दे। देखिए कमाल की बात है, हम प्रभु के आस्था की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात कर रहे हैं। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे ना इस पे, हमें हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हमने तो वहां पे चोरी हो रही थी दान पात्र में, ये बात बताई है, ये जनता के सामने रखा है कि वहां चोरी हो रही है और आप उसमें राजनीति खोज रहे हैं, किसको वोट कौन सा जाएगा, किसको वोट किसके मिलेगा। अरे धर्म, ये

0: धर्म पे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। हमें कभी देखा धर्म के नाम पे वोट मांगते हुए? कभी आपने देखा कि हम वोट मांगते हैं तो एक्सप्रेसवे पे मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं तो हमने मेट्रो चलाई उस पर मांगते हैं, हमने स्टेडियम बनाया उस पर मांगते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया उस पर मांगते हैं, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई उस पर मांगते हैं, हमने लैपटॉप दिया उस पर मांगते हैं, पार्क बनाए उस पर मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलपमेंट
1: चारू प्रज्ञा, ये वोट के लिए राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, आस्था के लिए, हर्ट फीलिंग्स के लिए।
0: नहीं, प्रभु के मंदिर में चोरी हुई तो वो बात मैंने उठाई क्योंकि वो मेरी आस्था का विषय था, मेरे हमारे आस्था पे चोट पहुंच रही थी, इसलिए हमने वो बात उठाई, उजागर किया प्रभु के।
1: जब उदयनिधि स्टालिन इसी सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे तब आपकी आस्था पे चोट नहीं लग रही थी?
0: स्टालिन तो अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी बता दे स्टालिन को अपने साथ नहीं लेगी डीएमके को, आज ही बोल दे, बीजेपी प्रवक्ता बोल दे मैं डीएमके के डीएमके पार्टी को अपने साथ एनडीए में कतई नहीं शामिल करूं।
1: अरे सर, आपने चोटिल आस्था का थोड़ा सा इतिहास भी तो बताइए, आज आपकी आस्था इतनी चोटिल है, उस वक्त हुई थी कि नहीं हुई थी?
0: मैंने भारतीय जनता
1: पार्टी राजा ने उसके खिलाफ बात की थी, जब स्टालिन ने उसके खिलाफ बात की थी,
0: साथ भी सरकार बनाएगी, पीडीपी के साथ भी सरकार बनाएगी, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलती थी उसके साथ भी सरकार बना लेगी, मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना लेगी।
1: okay.
0: मलाई खाना होता है वहाँ
1: okay, चारू क्या रिस्पॉन्ड?
0: जहाँ yes. मलाई नहीं मिलती है वहाँ पे धर्म की राजनीति सुन
1: रही।
2: Done. Yes. And if it is about accountability, then there cannot be two sides to this debate at all. If Anurag ji ki aastha itni strong hai, to us aastha ke naam par abhi Krishna ji ka bhi naam le de aur Krishna Janmabhoomi ko bhi support kar de. Kyun nahi support kar pa rahe? To bhai aastha selective ho sakti hai kya? Mera to straight sawal aapse ye hai. Aur agar aap yahan par accountability ki baat karne wale log hai,
0: kamal ki baat kar rahe, jawab le liye.
2: आप specifics में बोलिए, हम Krishna Janmabhoomi movement ko support karte
0: hai. Paalka ko manne wale log hai. हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, अम्बे हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका जो कहता है हम मानते हैं वो, उसके साथ मेरा धर्म मेरा आस्था का विषय है, दोनों को जोड़िए मत, ये गलत कर
2: रहा है। He has proved it himself. The minute you start questioning his आस्था, he's going to
0: speak over me,
2: Anurag ji. Anurag ji, monologue नहीं है. I'm going to wait for him to finish.
1: Okay. वैसे जब भी आपकी आस्था पे चोट लगती है, मैं को फिर से एक बार याद आ गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इतनी लंबी लिस्ट है, that some of them are actually skip my mind. January 27, 2023, हमेशा उनके बहुत ही उच्च विचार रहे हैं अबाउट पीपल फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी, बट एनी वे लेट मी ब्रिंग इन आशुतोष एज़ वेल, लेट मी ब्रिंग इन आशुतोष एज़ वेल,
0: चले जाए वो, आप उनसे पूछिए पद्मजा जी, अगर आपका एजेंडा चल गया हो तो मेरी पार्टी में नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए, उसमें तेल
1: सर, उस वक्त आपकी पार्टी में थे,
0: हमारी पार्टी
1: उस वक्त आपकी पार्टी में थे जब उनको संत महंत जल्लाद और महाशैतान दिखाई दे रहे थे, उस वक्त आपकी पार्टी में थे। बट व्हाट डू यू से टू सज्जन कुमार एनालिसिस आशुतोष, दैट पीपल मे वांट टू मूव टू द समाजवादी पार्टी बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी अ रिजल्ट ऑफ दिस सिलेक्टिव आउटरीच, बिकॉज हिस्ट्री does go against parties like the SP when it comes to this particular issue.
3: See, Padmaja, I will not make any prediction right now because elections are still far away, and we have a history of what happened in Tamil Nadu. Suddenly everybody thought the DMK is going to win, and suddenly somebody like Vijay comes in and he wins elections. Like Arvind Kejriwal in 2015, he won with 67 seats out of 70. Who had thought and who had predicted that when Narendra Modi was at the peak of his popularity, BJP will get only 3 seats. So let's not get into that. It's too early to predict anything about UP right now. Yes, I agree that BJP is on a strong wicket. But to underestimate Samajwadi Party in UP, especially after 2024, I think that's not advisable. I just want to comment on one small thing about the Tamil Nadu. See, this is the same BJP which had a relationship with the DMK. And I'm not talking about what Dayanidhi Stalin has said about Ram. That's condemnable and it should not be there. But anybody who understands the DMK politics and ideology, who has read Periyar, knows fully well what Periyar thought about Ram and the kind of things were done in Tamil Nadu. So BJP had no problems having a truck with DMK forming government because at that point of needed. And can anybody from the BJP today say that they will never have any kind of relationship neither directly nor indirectly with DMK in future ever, because Dayanidhi Stalin has said something wrong about Sanatan.
1: But Ashutosh, can they, today can they the say question it on record? Is not being asked of not being asked of Udayanidhi Stalin or the DMK for what they said. It's being asked of people who today are claiming that they are hurt but didn't show any sense of hurt and rubbed shoulders with the DMK after these comments had been made. Surely there is some dissonance there, right? And even the voter is going to see through that dissonance. When Anurag Bhadauria goes to the voter and says, BJP is anti-Sanatan, BJP is anti-Ram Mandir, then that voter will say, but you didn't seem very concerned about Ram Mandir or Ram.
3: Padmaja, see, I think a lot of emphasis has been given on the ritualism. Hinduism is not exactly about ritualism. Let's face it.
1: Okay.
3: Where will you play Shankaracharya? Shankaracharya has never talked about rituals. But Ramanacharya has talked about rituals.
1: But sir, we are not even talking about ritualism. One is talking about outright disrespect.
3: You are not giving chadhavas, you are not Ram.
1: You are talking about outright disrespect. If your leader is going to call names to the Ramcharitmanas, if you are going to abuse the saints and seers and you keep quiet, then that kind of selectivism shines through.
3: No. Again, I'm saying, is there one kind of Ram story in this country?
1: Okay.
3: There are more than 100. Which one is authentic? So you might have a disagreement on that. I might have a disagreement on that.
1: Absolutely. Buddhism
3: has a different Ram story. Jainism is a different Ram story. You go to Himachal, there's a different Ram story. You go to Tamil Nadu, there's a different Ram story.
1: Sure. So I mean, BJP wants to monopolize the Ram story. Interpretations of what is the real version of the Ramcharitmanas of the Ramayana. But I think we can draw the line at calling seers and saints Mahashaitan and Jallad. I think the meaning of that is pretty clear to whoever is watching. I'm going to leave it at that because, like we said, one part is the investigation. And on that, without a doubt, there should be the full truth coming out. And the other, though, is the politics, which only promises to get more interesting. Congress delegation going to Ayodhya tomorrow. For the time being, though, all gentlemen, Charu Pragya, thanks very much for joining me. All right, so what is going to be the Samajwadi Party's strategy from here on? We caught up with Akhilesh Yadav himself in conversation with NDTV's Manoranjan Bharti. Listen.
4: यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर चढ़ावा छोड़िए
5: ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का राह हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो लेकिन जो खबरें आ रही हैं जो सूचनाएं आ रही हैं जो जानकारी मिल रही है और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है और SIT की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं SIT में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि CCTV बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार CCTV ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है राम धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे
4: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है
5: दोषी मैं नहीं कह सकता मैं विपक्ष में हूँ मैं दोषी नहीं कहूँगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT आपने रिपोर्ट किसको दी है आपने रिपोर्ट्स किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच एसआईटी किसने बनाई है? एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी? क्या एसआईटी की जांच के लिए कौन सा संस्था होगी फिर?
4: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
5: नहीं, जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल ये नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं,
4: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
5: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट में रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।
4: तो आप इसको एसआईआर से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के?
5: नहीं नहीं, उनकी उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे, तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें।
4: मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर।
5: नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
4: एक नारा भी दिया है आपने कुछ?
5: नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
4: एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर, पेपर लीक कैसे रुकेगा?
5: देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा।
4: आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया गठबंधन?
5: नहीं, ये बीजेपी के लिए इशू है, ये बीजेपी को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पर ही आप जाते हैं और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का?
4: पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है।
5: देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते, और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना इसके लिए। सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें।
4: आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम होगा?
5: मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप ईडी सीवे इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था, हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है, और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ? आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का, और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे, जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। तो आप सांसद को क्यों डरा रहे हो?
4: जिस तरह से टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नज़र रहेगी उनकी?
5: नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है, और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए? लेकिन मैं तभी

0: तमाम सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल पास हो गया जो महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, इसलिए अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें।
1: आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके डीएमके से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप चाहेंगे डीएमके इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे?
0: नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं और डीएमके का जो इशू है वो जेन्यून है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
1: आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग,
0: जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए, जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है वो सब पीडीए के लोग हैं, जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ।
1: ये जो पार्टियाँ टूट रही है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका?
0: सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कह रहे हैं वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में ना रहे।
1: कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे यूपी,
0: इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे।
1: राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके?
0: देखिए
1: मायावती जी के लिए
0: नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जनसमर्थन, और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे हैं उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूं। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं,
1: रास्ते खुले रखे छोटी सी
0: नहीं सबके साथ। देखिए जो गठबंधन हम लोगों ने अभी अभी किया था और 2024 में जिस पे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमज़ोर दिखाई दे।
1: कांग्रेस को सीख दे रहे हैं?
0: नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ, कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है।
1: तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है?
0: नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते।
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी? क्या एसआईटी की जांच के लिए कौन सी संस्था होगी फिर?
1: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है।
0: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है।
2: आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
3: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the temple, alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
4: बार ने आज ये फैसला लिया है कि एसआईटी का विरोध किया है, ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे सीबीआई के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
1: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
4: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों, कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
3: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इनटू अ वेरी क्विक कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ न्यूज़ एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑन एनडीटीवी।
5: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
5: Let's do it, let's do it, let's start.
8: Breaking stories, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter.
9: What is in your letter?
5: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
15: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
16: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
15: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
16: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
15: What would the young man in India say if he could see you right now?
16: I'll be up there soon with you.

0: After dropping the family at Mumbai airport, the driver says he received a call from Ketan informing him that his passport was missing. The passport was never recovered. Without the document, Ketan was unable to board the flight and the Bali pre-wedding shoot was cancelled. Ketan's father had also alleged sabotage.
1: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें
2: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया वो पता अब चल रहा है तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया
0: He claims all passports, foreign currency, credit cards and important documents had been kept together in a single pouch inside the car. According to him, everyone received their passports at the airport except Ketan. He says Sia had returned alone to the car at the food court after claiming she had forgotten her mobile phone. Police now say their investigation suggests Sia deliberately mislaid Ketan's passport during the journey, derailing the Bali trip. The missing passport, a cancelled Bali trip, and the driver's latest claims have become crucial pieces in an investigation that continues to unravel. With Sujata Dwivedi in Pune, Bureau Report, NDTV.
3: Moving on to some other important stories that we're tracking on this edition, and this is about the ongoing probe into the Ram temple donation theft. It has intensified now. Supreme Court will hear the matter after July 13th. As per sources, bank raised an alarm about 3 months back over the donation theft that was happening inside the temple. The outsourcing company was about to initiate the process of removing the counting staff, but trust officials came to their defense as per sources. SIT has now recorded the statement of Champat Rai and will issue notices to Anil Mishra. In addition to that, statements will be recorded from several other individuals associated with the trust. The SIT probe into the Ram temple donation theft has uncovered major leads, from the accused being allegedly deleting WhatsApp chats to formatting mobile phones and also destroying the digital evidence while attempting to dispose of the stolen funds.
4: SIT mein khud swikar kar rahe hain ke CCTV band kar karke jo chadhava aaya hai उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है तो ये जो आस्था के साथ हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें लाइट बंद कर दें कोई ना देखे तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें तो हमारे प्रभु श्री राम है प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है राम धन में अगर चोरी हुई है रख दें दोबारा तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे
5: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है
4: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ मैं विपक्ष में हूँ मैं दोषी नहीं कहूँगा लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT आपने रिपोर्ट किसको दी है आपने रिपोर्ट किसको दी है सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है क्या SIT की भी जांच होगी क्या SIT की जांच के लिए कौन सी संस्था होगी फिर
5: तो आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही वही निगरानी भी कर रहा नहीं, है चोरी भी वही कर रहा है
4: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं आप ही ने SIT बनाई है तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें क्योंकि ये बात खुल गई है
6: आप में हिम्मत नहीं क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं

0: जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो, ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
1: Well, the Ram Temple donation controversy has taken a fresh turn with the Ayodhya Bar Association intensifying its stand against those accused in the temple, alleged temple donation theft case. At a meeting, lawyers demanded that Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rai should leave Ayodhya within 3 days, warning that they would otherwise block the city. The Bar Association also resolved that no advocate would represent the accused in any legal proceedings and warned of action against lawyers who chose to take up their cases. The developments add another layer of pressure as the controversy over the alleged misuse of temple donation continues.
2: Bar ne aaj ye faisla liya hai ki SIT ka virodh kiya hai, ye jaanch CBI se honi chahiye. Dusra ye kaha hai ki jiladhikari sahab ko patra denge कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, नरेंद्र अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो हैं बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जाँच की जाए इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे सीबीआई के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूट को प्रोसिक्यूशन की पैरवी।
3: वकील अगर मुकदमा लड़े तो?
2: मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा, इतनी बड़ी चोरी हुई इतने करोड़ों, कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपये पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैर भी करेगा।
1: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इनटू अ वेरी क्विक कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ न्यूज़ एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑन एनडीटीवी।

0: Ketan Chaudhary traveled together to Udaipur even before Siya's engagement to Ketan. And they're of course now probing allegations that nearly 1 crore rupees were taken from Ketan in the name of wedding preparations, which were transferred to Chetan. Now, in the latest development, what we're also learning is that both the accused Siya and Chetan have now been sent to police custody till July 3rd, an extra 5 days of police probe, because the police officials say that they need to examine new angles, new leads in the Pune murder story.
1: एडवोकेट, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, आज कोर्ट में पेशी है, क्या आपकी दलीलें रहेगी?
2: नहीं नहीं, अभी वो आज का सब पुलिस का रिमांड रिपोर्ट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ये अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, हम लोग ऐसे आर्ग्यू करेंगे.
1: आशुतोष श्रीवास्तव वकील अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वैसा नहीं,
2: वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन ये इसमें बहुत दिन से ये फैमिली मेरे कॉन्टैक्ट में है, इवन सिया भी मेरे कांटेक्ट में है, मतलब पुलिस कस्टडी रिमांड के ड्यूरिंग कस्टडी रिमांड. हाँ, वकालतनामा हम लोग वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वकालतनामा एज सून एज शी इज प्रोड्यूस बिफोर दी कोर्ट.
1: मजिस्ट्रेट कस्टडी की मांग करेंगे आप?
2: हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे. हम लोग तो उल्टा ऐसा है, फैमिली का भी कहना ऐसा है कि आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड. इसके आगे भी अगर पुलिस को कुछ तहकीकात करनी है, जांच करनी है, तो उसमें भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करने वाले.
1: केतन अग्रवाल मौत मामले में आरोपी नंबर 2 यानी चेतन चौधरी को एडवोकेट शाह ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आज पुलिस कस्टडी खत्म हुई है और उन्हें कितने दिन की कस्टडी दी गई है और ये पूरा मामले आज में क्या डिस्कशन हुआ?
3: आज जो कस्टडी की मांग की थी पुलिस ने, वो जो उनके रीजंस थे रिमांड रिपोर्ट में मेंशन किए हुए, वो सेम थे जो पिछले रिमांड रिपोर्ट में मैंने रिप्रेजेंट किया था 2 में, वही कॉपी पेस्ट करके वो रीज़न थे, उसमें कुछ अलग बात नहीं थी. लेकिन ये कोर्ट में सरकारी वकील ने ऐसी दलीलें दी कि हमको एक माइनर ऐसी उनकी मांग थी कि पैंट जो है एक्यूज नंबर 2 का, वो रिकवर करना था उनको, और दूसरा मोबाइल, हाँ मोबाइल के जो डेटा है, मोबाइल का CDRO, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था. तो हमारा आर्गुमेंट ऐसा था कि 7 दिन में फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या काम किया, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन. So they were prosecution was not able to mention the valid reason of that.
1: Time and being, sir, आप लोगों ने ये बात कही है कि just because चेतन वहाँ पर मौजूद था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर किया, आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बताते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या दलील?
3: No technical record is till date produced before the honorable court.
4: No technical record.
3: Till 7 days. No minute piece of evidence also is recorded.
1: Crime कैसे सिद्ध किया जाएगा कि चेतन उसमें involved?
3: That is up to the prosecution. We can't comment on that.
1: केतन अग्रवाल murder case, both the accused Siya Goyal and Chetan Chaudhary were today presented in the Wadgaon Mawal court, wherein today again they were sent to a 4-day police custody. After the 7-day police custody ended, both of the accused today were presented, wherein the police had stated several grounds on to which their investigation was carried out, and further they stated that they need almost 7 days of police custody to conduct further investigation, which includes that of crime recreation of the crime scene, taking Chetan to the spot and then recreating the entire crime. That is important. Other than that, the technical evidences needs to be studied again, is what the police stated. However, the defense from Chetan and Siya's end clarified that until now there have been almost multiple evidences that has already been collected, and what was exactly done in these 7-day police custody, that again a 7-day custody is required. However, after listening to both sides, the court stated that both the accused will now be in a 4-day police custody until the 3rd of July. Now, based on the evidence that the police has collected so far, the circumstantial evidence, including the technical records, the call logs, the deleted WhatsApp chats and the messages, have led to the police discover several of these claims, that includes that Siya and Chetan were in a relationship. Siya was unhappy with Ketan. She never really wanted to get married. to Ketan. Despite clarifying this, Ketan had still told her that she cannot escape or elope with the situation, and the families that they come from with that background, they need to get married, and that is where Sia was not really agreeing to that part. And eventually, with her secret lover Chetan Chaudhary, she went on to plan, is what sources tell, and currently that is a part of investigation the court is hearing upon. And also that the prosecution